0: वही आवाज, वही चेहरा, वही उसका रूप आप बिल्कुल नहीं लगते हैं।
1: कौन?
0: अनीता।
1: अनीता कहाँ है वो?

0: सिंगल
1: वही आवाज वही चेहरा भीर भीर भीर उसका रूप आप बिल्कुल नहीं लगते हैं।
2: कौन?